अच्छा यार क्या बात है, मास्टर सलीम एक ऐसा सिंगर आई थिंक के जिहड़ा 4-5 साल की उम्र तो गा रहा आ। बहुत घट ऐसे मैं सिंगर वेख्या कि जिहड़े 4-5 साल की उम्र तो गा रहे आ और अज तक भी बॉलीवुड पॉलीवुड दे विच बा कमाल एक इन्हां दी गायकी दा अपना हर जगह ते उन्हें लोहा मनवाया। पर जे उन्हां नूं एज ए ह्यूमन वेख्या जाइए उन्हां दे विच निम्रता प्यार सहज उन्हां ही आ। हर बंदे नाल आम होना एक कलाकार दे विच रूहानीयत रहनी उहदे सुभाव दे विच एक निम्रता रहनी इह हर कलाकार इन्नी शोहरत नूं पहुँचाउणा बड़ा मुश्किल आ। पर जे उहनां नूं तुसीं गल्लां करदे वेख्यो उहनां दा ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त आ। उह तुहानूं म्यूजिक भी सुणाउंदे आ सुरां नाल भी तुहाडा दिल लाउंदे आ नाल दी गल्लां दे नाल भी तुहाडा दिल लाउंदे आ। ओके और रोहन भाई जी साडे नाल जुड़े हुए आ। रोहन भाई जी मास्टर सलीम नूं लै के आ रहे आ टोरंटो दे विच। सो रोहन भाई जी तो पुछदे आ पहलां तां कहिंदे कि जदों भी चंगा कुछ काम करिए ना उस तो पहलां रब दा नां लैणा बहुत जरूरी हुंदा। सो मैं एक मैसेज देना जिन्हें भी माता राणी दे भगत आ जिन्हें भी साडे नाल दोस्त जुड़े हुए आ जिन्हां ने बड़ा लंबा समां हो गया एक जिहड़ा जगराता जा निक्के निक्के होणा असीं जगरातियां ते जाणा पूरी पूरी रात दोस्तां मित्रां नाल घूमना ते लंगर खाना।

क्या बात है जी। सो 905-673-3337 बड़े खूब किसी ने कहा कि एकता मंजल जूर सी जिस तरह, एकता मंजल दूर सी जिस तरह, उत्तों दिल मजबूर सी जिस तरह, एकता मंजल दूर सी जिस तरह, एकता मंजल दूर सी जिस तरह, एकता मंजल दूर सी जिस तरह, किन्नी वारी मर्जी कई जलो पर पता की आ मंजल नेड़े ही आ। सो जेडे ख्याल आ साडे, जेडियां साडियां भावनावां आ, ये सिर्फ साड़ियाँ साड़ियाँ मर्यादावां चो झलकनिया चाहीदियां। कई बार हुंदा कि असी मॉडर्न हो गए, किन्ने क मॉडर्न हो गए, ये सिर्फ हो सकता कि साडे अपने अपनी सोच मुताबिक हो सकता। असी कहने कि जिहड़ी गंदगी है ना, कहिंदे साडे अखां च आ, पर नहीं, तुसीं एक चीज़ नूं समझो, जो दिखदा आ ना तुसीं उस नूं चुटला नहीं सकते। 905-673-3337 तुहाडे ख्याल की आ, 9056733337। ते कहिंदे इक तां मंजिल दूर सी जिस तरह, उत्तों दिल मजबूर सी जिस तरह, ठंडियां सावां सेका मारन बर्फां हेठ तंदूर सी जिस तरह। सो कई बार थोड़े ख्याल देखण तो बाद उत्पन्न होंदे आ, फिर सानू उहदे उपर किंतु परंतु करना। सी कहने कि नहीं भाई, उन्हें इदां दा नहीं कुछ पाया सी, थोड़े सवाल थोड़ियां अखां थोड़ियां नज़रां दे विच गलती आ। सो ये भी कई बार ख्याल प्रगट हो जांदे आ। 905

0: ने आके चेक करवाई है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, सनग्लासेस, आपको अपने आके चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, आपकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-93 पर कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: हर हर राम दियो दादा, इन सगला को विदा, अपनी कृपा धारी।

आज जुगा जाता मन पता गुर प्रसाद न होए संता गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाए मुठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पार हम।

अपनी कर मया रहा सिमर सिमर मन मन सुखी नानक निर्भया अल्लाह अल्लाह भगवान उपजिया सुख।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम अब बेहतर ही हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई ग्रेजुएशन की। और अभी बच्चों के स्कूल बंद हो जाने हैं, जून के एंड तक फिर छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चों को भी गर्मी होती है। तो आप सभी का स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपके लिए बढ़िया सा प्रोग्राम पेश करते हैं। पहले तो आपको बता दें, आपने फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया लेके देना है, या फिर आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू लेके देना है आउटडोर पार्टी करने के लिए। वो तो आप फादर्स डे के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सेल्स का फायदा उठाइए, topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल लैंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने कहीं पे भी आपको बढ़िया सा आपको सोने के गहने लेने हैं, सोने के बार्स लेनी है,

0: 905-673-100 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी फादर्स डे स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। आप सभी को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो अब आपके लिए ये बहुत ही एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो आप कोलिजन का काम करवाने के लिए आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं। तो आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको मास्टर कोलिजन डिपो पर जाइएगा। किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप जान सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिएगा, मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाके उनकी सारी जानकारी ले सकते हो। और गोर रोड पे लंदन में उनका गैराज है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। तो गाना भी बहुत बढ़िया सा है। तो लेट्स गो।
1: चमन के फूल भी तुझे को गुलाब।
0: लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद

जी हाँ, एक बार फिर से आपका संसार में क्या है कि जिंदगी में आपको अपने आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में देखना जानना बहुत जरूरी है, उसके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धोखा करने वाले लोग हैं, हेरा फेरा करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग शक्लों में अलग अलग भेसों में आपके आसपास मंडरा रहे होते हैं और आपके ऊपर हावी होने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी के खुद मजदार हैं, आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने आप को खुद ही बचाना चाहिए, बजाय कि बाद में पुलिस के चक्कर पड़े और फिर और अदालतों के चक्कर पड़े। तो अदालतों के चक्कर में तो कोई आपके पैसे ही लगेंगे। अब इस हफ्ते देखो, इस हफ्ते में 2 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई अपने इन लाइन ऑफ देयर ड्यूटी। हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है और साथ साथ उनकी जो समाज में उन्होंने इतनी सेवा की, और हम सभी को दुख है, ये जो दुख है हम उनके परिवार के साथ मिलकर उनको शेयर करते हैं उनका ये दुख, क्योंकि वो कितने समाज के लोगों की जानें बचा रहे थे, सेवाएं कर रहे थे और उसी लाइन ऑफ ड्यूटी में उनका उन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इसलिए हम उनका वो जितनी देर तक ये धरती है लोग उनको याद करते रहेंगे और उनकी कुर्बानियों को धन्यवाद करते रहेंगे।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 216-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है कर्जुसार में। तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपना अपने आप से अपना ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन जो होती है, कुछ भी सीखना है आपको तो एजुकेशन इज एजलेस, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीख सकते हो। जैसे AI है, अभी अगर आप घर पे बैठे ही अपने लिए कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो आपके लिए कितनी बड़ी नॉलेज की बात हो जाएगी।
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 and 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
1: तो अब अगर आप किचन मॉडल गोल्फ में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप निश्चित खंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। अब आपके लिए आप एक और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत है, देवानंद के ऊपर फिल्माया गया था और तेरे घर के सामने फिल्म का। लेट्स गो टू, अगर आप मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी मदद करते हैं। तो अभी अपना ट्रक बुक करने के लिए आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4416-524-6704 HK मूवर्स।
3: ये बता
1: जी हाँ, तो आप प्रोग्राम महसूस, अगर आपको किसी तरह की भी आपने कोलिजन का करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। तो आप और जानकारी उनके बारे में, फिर आप अगर कोई भी किसी तरह की भी सेवाएं लेना चाहते हो तो आपके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। तो HK मूवर्स।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत मैंने चुना है, तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लाना चाहते और फादर्स डे के लिए गिफ्ट आपको प्रीमियम बढ़िया सा टीवी आपको चाहिए, जहाँ फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं फादर्स डे के लिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की फादर्स डे सेल का फायदा उठाइएगा। उनकी दो लोकेशन हैं आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन ग्वालियर है। तो अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग, तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, आपके सामान को पार्लर से पहुंचाते हैं, तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए। तो 416-524-6524-6704 आपके सामान को हफाजत से पहुंचाते हैं एचके मूवर्स। मूविंग के लिए आज ही कॉल कीजिए 416-524-6704।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर को कॉल कीजिए 905-625-0055-0055। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्वीट्स का रेस्टोरेंट को कॉल कीजिए 905-814-1730-8814-1730। नानक राम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला, हैव ए वंडरफुल डे। रात को आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे एक बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। तो अब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो, और मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और सराहते हैं।

0: आई ग्लासेस, सिल्की ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए में जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-93 पर कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: हर हर रात योगा

0: करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोने।

0: नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तू ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर एंड तुहाडे सारिआं दा अपने शो रेडियो आवाज़ विच स्वागत करदी हाँ। हुण तुसी सारे जाने अपने रेडियो दा वॉल्यूम कर लो अप ते स्ट्रेस दा वॉल्यूम कर लो बिल्कुल डाउन, क्योंकि हुण तुसी सुन रहे हो साडा शो रेडियो आवाज़ हर गली हर सिटी हर टाउन। ते उम्मीद करदी हाँ तुहाडा सारिआं दा अज दा दिन बहुत ही वधिया होवे, चढ़दी कला वाला होवे। ते साडा शो रेडियो आवाज़ 1001 तुसी सारे सुन रहे हो साडा शो। ते अज असीं इन्नीआं सोहणीआं सोहणीआं डील्स लैके आवांगे। वीकेंड दा धमाकेदार शो हुंदा है साडा, और साडे शो दे मेन होस्ट हुंदे आ साडे नाल अमनदीप सिंह बैनीपाल जी। एंड अमन जी, स्वागत है तुहाडा।
1: थैंक यू सो मच। इक सुरमई सवेर जिंदगी दे बैराग वर्गी, अलादीन दे चिराग वर्गी, जिवें संघणे बोड़ां दी छां, जिवें मूंह विच डुब्बी मां, ठंड वर्गी, खंड वर्गी, दोस्ती दे सच वर्गी, खुशी ना भरे गच वर्गी, मेरी सत श्री अकाल भी प्रवान करूंगे। और एक खूबसूरत सवेर दा आगाज़ एक खूबसूरत जे मुल्क कैनेडा दे विच, ते खूबसूरत मुल्क अमेरिका दे विच, दोनों मुल्कां ते तकरीबन 4 तो वध प्रोविंसेस 1000 किलोमीटर दे रेडियस च, ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ दे विच, इस समय गलियां मुहल्ले कूचे घर बार जिथे मर्जी हो ट्रांजिस्टर रेडियो सैट्स या तुसी ऑनलाइन सानू सुन रहे हो www.am530.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ radioastronto.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ।

0: हाँ जी किरण, हेलो हेलो,
1: हंसराज हाँ,
0: श्योर है किरण?
1: हाँ जी।
0: चलो ते कुलदीप जी।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
2: बाबा जी हंसराज जी, मेंबर पार्लियामेंट एक्स एम।
0: मैं लगता थोड़ा भुलेखा पै रहा सारा ने।

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि अगले एक घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डालर की बचत करके दईए। सब तो पहला सुल्तान जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते बहुत लंबे और किन्ने फरे हो गए इस काम च?
1: 39 ईयर।
0: लो जी ऑलमोस्ट 40 साल का इस बिजनेस च। जिहड़ा पुराना बंदा हुंदा उहनूं इक तां नॉलेज पूरी हुंदी आ, इन एंड आउट दी पूरी नॉलेज आ। जिहड़े सेल्समैन रखणे आ, किहड़े रखणे आ, किन्नां नूं किहड़ी ट्रेनिंग दिंदे आ, हर एक शय इन्हां नूं पता है। लेकिन अज असी उस बारे नहीं गल करनी, अज एक्सपीरियंस 40 साल का हैगा, अज गल करनी आ टेलीविजन टेलीविजन ते टेलीविजन टेलीविजन ते।
1: ओदी रीजन ए है जी के फीफा वर्ल्ड कप हो रहा, ते फीफा वर्ल्ड कप दे विच सैमसंग ने स्पोंसर कीता, ते सैमसंग चाहुंदा है कि मैक्सिमम बिग स्क्रीन टीवियां ते असी डिस्काउंट करिए ताकि कस्टमर्स जेड़े आ वड्डी स्क्रीन ते अपने घरां च बैठ के मैच देख सकन। और इहदे च एडवांटेज ये दिता जा रहा कि कोई 200 या 300 या 400 नहीं जी, 600 तो लाके 800 डालर दा डिस्काउंट है जे 85 इंच तक टीवी लेंदे हो।
0: अच्छा
1: जे टीवी लेंदे जी 98 इंच या 100 इंच या 115 इंच ते ओदे च तकरीबन मोर देन 1000 डालर दा डिस्काउंट है जेड़ा इस टाइम दिता जा रहा है। जदों मैं कैलकुलेट करदा 40% दा डिस्काउंट बन जांदा, समवेयर इट्स मोर देन 40%। 85 इंच दा QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर दे नाल 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी है, क्लीयर क्रिस्टल पिक्चर क्वालिटी है। $2000 वाला 1299 सैमसंग ने 1299 एक्सक्लूसिव डील दिती है बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस नू। ब्रैम्पटन अपलायंसिस .com साडी वैबसाइट तो तुसी डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकदे, ते वॉक इन कस्टमर लई एडिशनल गिफ्ट्स जिहड़े आ उह भी तुहाडा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल 4-5 टीवी इन स्टॉक रह गए होंगे, जल्दी क्विक एक्ट करना है तुसी। बिग स्क्रीन टीवी नू जे होल्ड करना है मैक्सिमम डिस्काउंट दे नाल 1299 दा, अदरवाइज 1800 डालर तो घट अगे जाके टीवी नहीं मिलना।
0: 1299 दा टेलीविजन ले लो, 6 महीने पैसे देण दी लोड़ नहीं, कोई ब्याज कोई इंटरस्ट नहीं लगना। जिस दिन तुसी टेलीविजन लेके गए घरे उस दिन तो यह पेमेंट सिस्टम चलना है। सो 6 महीने 1 सेंट देण दी लोड़ नहीं।
1: ते कदी सोचिया होएगा कि 55 इंच टीवी तुहानू सिर्फ 399 दा मिले?
0: हां जी, ना ये सुपने हुंदे सी।
1: 800 डालर दी प्राइस एज ऑफ टुडे भी जी।
0: अच्छा,
1: पर तुहानू 399 च 55 इंच मिल रहा। 65 इंच कदी सोचिया सी 699 दा मिले, एज ऑफ टुडे भी $1000 दी प्राइस है 699 दा मिल रहा। पर उन्नी देर ही मिलना जिन्नी देर स्टॉक अवेलेबल है, उस तो बाद इन्ने दा ही मिलना है, $1000 $900 दा ही मिलना है 65 इंच भी। पर आज दे दिन तुहानू 699 ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस तो मिलना है। और 699 तुसी चाहो 6 महीने च पे करो, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
0: अच्छा, जेड़ा 6 महीने च पे करो, हो सारा महीने में थोड़ा थोड़ा करके?
1: हाँ जी, ईवन देखो भाजी गल ये है ना जी, तुसी $3000 तक दी भी शॉपिंग करो ना।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: $500 महीना करके पे कर दो, 3000 पूरे हो गए।
0: सो जिन्ने दी भी शॉपिंग करे थोड़े थोड़े करके देने हैं, वो दे दो कट्ठे देने, वो तुहाडी इच्छा है। कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे महीने महीने दे दो चाहे 6 महीने च दे दो।
1: ईवन $2400 तक दी भी शॉपिंग करो, $400 महीना करके दे दो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तो कहा कि बिग स्क्रीन टीवी $3500 वाला 98 इंच।
0: हाँ जी,
1: देखो किन्ने कंज्यूमर दी आम बजट च आ गया, $3500 तो सिर्फ 1999 दा।
0: हाँ जी,
1: ते 1999 भी 6 महीने च पे करना, थोड़े थोड़े करके पे कर
0: दो। सो बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। तुसी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस चक्कर लाओ, हाथ लागे दे लो। जेहड़े टीवी या टेलीविजन तुसी दस रहे हो ये ऑलरेडी उते डिस्प्ले ते हैगे?
1: डिस्प्ले ते भी है जी, और राइट वे स्टॉक च भी अवेलेबल है। 48 आवर च तुहाडी डिलीवरी स्केड्यूल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री डिलीवरी है। बल्कि साडियां डिलीवरियां जड़ियां हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक, नियाग्रा फॉल, वेलेंड एरिए च ऑलरेडी जा रही हैं। अगर तुसी राइट वे डिसीजन लेंदे हो तो तुहानू 48 आवर च डिलीवरी जड़ी है इस एंड ते भी मिल जाएगी। ईवन क्योंकि हैमिल्टन वाले पासे भी जाना है, तो मिल्टन ਤੇ ਓਕਵਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਓਕਵਿਲ, ਮਿਲਟਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ, ਵੈਲੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ।
0: ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਬਚਤ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ, 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚਿੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, 905-450-2828, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ .com। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905-450-2828, 905-450-2828।

0: 1230.ca.
1: संगीत संगीत
2: संगीत रुदी खुराक है,
1: आत्मा दी आवाज है,
2: कुदरत दा वरदान है
1: और प्यार दी जुबान है।
2: जिंदगी जिंदगी जिंदगी।
3: सत श्री अकाल जी सारे नो, हरवीर सिंह पुल्लर वालों एएम 530 रेडियो प्रोग्राम चढ़दी कला च जुड़ चुके सारे श्रोतियों नु प्यार भरी सत श्री अकाल जी, आया नु निघा स्वागत अज दे इस दिन दे विच। सो सैटरडे दिन है जी, जून महीने की 13 तरीक समा हो चुके है, 5 से 7 बजे तक तुसी इस प्रोग्राम का आनंद माणोगे। सो स्टूडियो दे विच गलबात करन दे लई नंबर 1-416-233-7368 416-233-7368 ते गलबात की जा सकती है। सो अज दे प्रोग्राम दे विच जिथे कि बहुत सारे गलबात होणगीआं, गीत संगीत होगा, खास संदेश साडे स्पोंसर सेवाना दे होणगे। तुसी इस प्रोग्राम दा हिस्सा बनना चाहुंदे हो तां सानू स्टूडियो कॉल की जा सकती है, तो नंबर अगेन 416-233-7368 416-233-7368 ते गलबात की जा सकती है। जॉर्डन संधु का एक गीत आ, ये गीत दे नाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि चल के प्रोग्राम होर बहुत सारी गलबात करांगे।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दिनाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुशामदीद एंड स्वागतम।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का और फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर से आपके दिलों पर दस्तक देकर आपको थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए चलते हैं सुखनवरी की दुनिया में। शेर व शायरी से लबरेज गजलों का ये मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं कहकशां। मेहरबान होकर बुला लो अपनी महफिल में, मेहरबान होकर बुला लो अपनी महफिल में, मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट कर ना आ सकूं। सामीन, मेहरबान या तो खुदा होना चाहिए या फिर उसके बाद खुदावंद इंसानों को इंसानों पर। जैसे कोई पीर फकीर जब मेहरबान होता है तो इंसानों की दुआएं भी लेता है और दुआएं देता भी है। कुछ ऐसी ही गजल आपकी नजर गुलाम अली की, कभी तो मेहरबान होके बुला।

दोस्तों ने दोस्तों से इस कदर की दुश्मनी के दुश्मनों की दुश्मनी का हर गिला जाता रहा। आज के दौर में कौन रकीब है या फिर कौन दोस्त, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन सा लगता है। ऐसी ही गजल पेशे खदमत है जिसे आवाज दी है जगजीत सिंह ने।

बिगड़ी को बनाने की तदबीर नहीं बनती, बिगड़ी को बनाने की तदबीर नहीं बनती, टूटी हुई कड़ियों से जंजीर नहीं बनती। कुछ अकल ना हो जब तक तदबीर नहीं बनती, अनजान दानिश से तस्वीर नहीं बनती। सामीन, तस्वीर तो इंसान खुद बना सकता है, मगरचे तदबीर खुदावंद करीम ही बनाता है। क्योंकि तस्वीर में रंग इंसान तो भर देता है, मगर तदबीर में रंग खुदा ही अता करता है। कुछ ऐसा ही रंग है इस गजल में, जिसे अपनी मखमली आवाज से नवाजा है लता मंगेशकर ने।